0: सर जी, अरे काहे मुस्कुरा रहे हो?
1: कहा मुस्कुरा रहे? नहीं कहीं मुस्कुरा रहे?
0: मुस्कुरा तो रहे हो?
1: नहीं मुस्कुरा रहे।
0: लो लो।
2: अनंत, अरे क्या हुआ? अनंत तेरा फोन आया यार।

ध्यान दिया था कि तुम्हें मेरी एक बात बहुत अच्छी लगी। रास्ते खोजने पड़ेंगे और ना मिले तो खोदने पड़ेंगे। फावड़ा उठा ले।